0: महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
1: वसीम ज्वेलर्स।
2: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, व्हेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। वेस्टर्न यूनियन इज ऑल्सो अवेलेबल एट पार्टिसिपेटिंग पोस्ट ऑफिसेस, यूरो चेंज एंड अदर रिटेल पार्टनर लोकेशंस। डाउनलोड आवर ऐप टुडे और विजिट westernunion.com। दिस ईद सेंड मोर देन मनी, सेंड जॉय। Western Union makes money from currency exchange.
3: The people of Britain have bought loads of noise-cancelling headphones. With a Barclaycard Rewards credit card, you could get cash back on eligible purchases and no fees on spending overseas. What you buy is your business. Rewarding you is ours. Subject to financial status, T's and C's apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 28.9% APR representative variable and 28.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
4: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise, where you can laze in luxury accommodation and kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
5: No, no, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Next. Bit of Butler House for you just after the break on Sunrise Radio. Osaki Saki. And some Student of the Year 2 for you as well. Stay there.
1: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
2: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक.
3: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा.
2: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है.
4: मैं ही राजीव भाटिया हूँ.
2: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
1: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर वन कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन. Call the Sunrise Radio sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
5: Tune in to The Love Lounge with me, Amit Soda, every Sunday from 7 p.m. where it's all about the love music, romance, love tips, love dilemmas and so much more. See you there.
6: Hi, I'm Sonia Dutta. Don't forget to join me on Drive Time, weekdays from 4 p.m. with Pepe's Piri Piri. You know I like to boggle your mind with all the fun and games, so if you like a challenge, tune in and get involved. See you there.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद

0: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई। Citybound Travel, with over 50 years of turning dreams into unforgettable journeys. From flight-only bookings to tailor-made holidays, honeymoons, safaris and escorted group tours, Citybound Travel does it all. Discover special offers to India, Dubai, the Maldives, the Caribbean, Africa, the Far East, South America and many other destinations. Call our Citybound Travel specialists on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk. Citybound Travel, your world, your journey, at all protected. Hey.

I do love this song. Shafqat Amanat Ali, Sunidhi Chauhan singing for Imran Khan and Sonam Kapoor. Bin tere koi khalish hai in hawaon mein bin tere. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे दी 11th की सुबह शबनम साही के साथ, जहां भी आप सुन रहे हैं होप यू हैविंग अ ब्यूटीफुल डे. वर्षा इन आइज.

0: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
1: कॉल 020-8900-2323 द स्टार टूर्स।
0: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
2: लुकिंग टू बूस्ट योर करियर और जस्ट स्टार्टिंग आउट? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.

0: available at all Quality Foods outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्य वार्धनर अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
2: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।